0: हेलो कत भाई, वेलकम। ये बोस अविंद का कालस संगले परी आईले
1: दे वी अंग सर कितेंगे आसा मुलाइने तू एकली सा सही मीटिंग मुंतस्ता ना।
0: हाँ वही तू का अविंद चार वरार मिले। एक्चुअली मीटिंग साढ़े चार वरार तुझे कड़े तिक्के उल्वे अमुनोनो अविंद तिक्के विज्ञापेले
1: कितें ते उलों को वो तीसरे वर्दी सो संग नेंगे सक्कर संगा बरिस वो ही एक
0: तून तिक्के सुख समझले या संगा को एक विशेषता असा अंतु बैल हाडा मरना वैयक्तिक रीतिन अमकान समिति दों कसा असो गडनार सां फ्रांसिसा सीसी अच्छा विचेंत तुका पहिलं संगता या मीटिंग वाला अंतर नका हम इतिके बाहर बसांगी। या

छः एक गसलिंग चिंत ना माँ का फट का कोरता तो हाँ कितने करूँ माँ का यो तार नियंत्रण करूँ जाइनं

0: அலை கத்துவே ஓ சான் பிரான்சிஸ் அசிசி சளி சனி சோ வட்சா ஜியலோ அனே தர்லங்ஸ் பிரான்சிஸ்கான் ஓர்து அனி ஸ்திரீயாங்க கிளாரிஸ்ட் பித்தல மத்ரின்சோ மேல்கொட்லோ
1: மகி ராமி பாவானி பைனி யா மேலா கஷ ஆயிலோ
0: தென்சுதே துகா சங்சே 1220 एक इसवेंत येदुलुस लग्न बेस जोडिल्ल्यांक आणि एरांक ई प्रादिसची जिनी जियोंच्याक ई तिसरी ओर्दो आराम केली. आपापल्या बेसाचे कैदे पळून लायकानी ई मग्नेची आणि प्रादिसची जिनी जियवेत
1: आणि यात्रिक जागो परशंकुला म्हणतात नेवे ते किते
0: परशंकुला म्हणल्यार लहान सुवात म्हणून अर्थ. याच जाग्यार मोरी मायानी जिजू आंजा संगे फ्रांसिसाक दिस्टीक पडिल्लो जागो. हांगासर आसल्या माउंट लावेल्ला शापलांत सेराप बडवो दिस्टीक पडोन फ्रांसिसाच्या आतां पांयांक क्रिस्ताचे 5 गाय कंचयल्ले. येरां आयली आमी भायर वचून मिटींग हॉलांत आटो सुरू करया. ओग्लाब जावं जेजू क्रिस्ताक.

0: हेलो कत भाई, वेलकम। ये बोस अवेंद का कालस संगले परी आईले
1: ते हुई अंग सर कितेंगे आसा मुलाइने तू ये तीस साई मीटिंग मुंतस्ता ना।
0: हाँ वही तू का अवेंद चार वरार मिले। एक्चुअली मीटिंग साढ़े चार वरार तुझे कदे तिक्के उलवे अमुनानो अवेंद तिक्के विज्ञा पेले
1: कितेंते उलों को वो तीसरे वर्दिसो संग नेंगे सक्कर संगा बरिसो वो ही एक
0: तून तिक्के सुक समझले या संगा को एक विशेषता असा अंतु बैला हादाम बरना वैयक्तिक रीतिन अमकान समिति दों कसा असो गडनार सां फ्रांसिसा सीसी अच्छा विषयंत तुका पहिलं सांगता या मीटिंग वाला अंतर नका हम इतके बाहर बसांगी। या

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: आप सुन रहे हो रेडियो सारंग 107.8 FM।